0: केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670, 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
2: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने, ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: सिमर सिमर सुख पाव। महाराज कृपा कर साडे ते, इह साडा शरीर प्रवान हो जावे। जदों गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी भाई लालो दे घर गए ना, भाई लालो ने सारी रात घर विच सत्संग हुंदा रहा, बाणी दा प्रवाह चलता रहा। किरती गुरसिख ने लंगर तैयार किया, प्रशादा तैयार करके गुरु नानक साहब जी दे अगे थाल रख दिता। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने गल विच पल्लू पाया, अरदास कीती, भाई लालो तेरे घर विच कीर्तन होया, तेरा घर भी प्रवान, तेरी दसा नौं दी सची सुची किरत कमाई ना, तू ये लंगर तैयार किया, तेरा लंगर भी प्रवान। भाई लालो तू गुरु की संगत की है, तू भी प्रवान। भाई लालो नू आख्या तेरा घर भी प्रवान, तेरा लंगर भी प्रवान, तू भी प्रवान। गुरु नानक साहब महाराज मात पातशाह जी जी जो मलक भागो दे घर गए, घर तो ओदा भी सी पर उत्थे नाम नहीं सी जपया जांदा, उत्थे संगत नहीं है, वो जिहड़ा लंगर है वो अपनी ओदी सच्ची सुरच कमाई दा नहीं है। आप भी गुरु तू बेमुख है, अरदास उत्थे भी होई है, अरदास उत्थे भी होई है। गुरु नानक साहब जी ने आख्या मलक भागो नू, मलक भागो तेरा घर भी प्रवान नहीं, तेरा लंगर भी प्रवान नहीं, ते तू भी प्रवान नहीं। अज ध्यान मार के वेख लीए, साडे घर प्रवान हो जाण गुरु रामदास जी नू, साडे घरां विचों नशा पत्ता तुर जावे। जे साडे घरां विच अज भी नशे पत्ते दा दौर है ते गुरु रामदास जी नू साडे घर प्रवान नहीं है। जे अज भी साडे घरां दे विच जिहड़ी साडा लंगर है वो दसा नौं दी सची सुची किरत कमाई दा नहीं, ठगियां ठोरियां हेरा फेरियां गरीबां दा खून चूस चूस के भावां तुसीं लंगर ला लो, वो तुहाडे लंगर प्रवान नहीं, तुहाडे घर प्रवान नहीं, तुसीं गुरु नानक गुरु रामदास जी नूं प्रवान नहीं। महाराज असीं तेरे दर ते आया, साडा घर प्रवान हो जावे, साडा लंगर प्रवान हो जाए, असीं प्रवान हो जाइए। महाराज कहिंदे हर हर जपन जपो दिन राती, हे भाई जप हर हर हर और धारी, इनू बारंग बार बार प्रभु जपीए, ये मार्ग चलत चलत हर गाइए। इनू जपन वास्ते कोई बहुते पैसे दिए, गरीब बंदा नहीं कह सकता कि मैं मेरे को पैसे नहीं मैं किवें करा। इनू गरीब तो गरीब भी जप सकता है, इनू काम करदे हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। तुसीं अपने घर का काम करदे हो, वाहेगुरु वाहेगुरु करी जाओ, वाहेगुरु वाहेगुरु करके मिठे प्रशादे पक सकते ने। मैनू गल याद है एक बारी कोई व्यक्ति किसी मंडी दे विच कणक लैण वास्ते गया सी, मैं उहदे नाल सी, शायद मैं पहले भी यह गल तुहानू नाल सांझी कीती है। उसने आख्या भाई साहब जो मेरे नाल सी उस मंडी दे विच जिहड़ा आड़ती सी उहनू कहिंदे सी भाई साहब ऐसी कणक दिओ जिस कणक दे प्रशादे मिठे बन। वह बड़ा सियाना सी, सुलझा होया सीगा। उसने उहदी बांह फड़ के आख्या काका कणक जिहड़ी मर्जी लै जा, मिठे ते कौड़े प्रशादे बनाउणे तेरे घरवाली ते डिपेंड करदा है। कहिंदा उह किवें? कहिंदा कणक माड़ी भी होवेगी वह गुरु गुरु करके बनावेगी, मिठे प्रशादे बन जाणगे। कणक चंगी भी होवेगी वह कुड़ कुड़ करके बनावेगी, मिठे प्रशादे नहीं कौड़े प्रशादे बन जाने ने। असीं घर दे विच भी जिहड़ा प्रशादा तैयार करना, रसोई दे विच भी जिहड़ा प्रशादा तैयार करदे गुरु गुरु करके करिए, हवाए गुरु वाहेगुरु करके करिए। सतगुरु जी इह गल कह रहे ने कि महाराज सच्चे पातशाह यह जिहड़ी दात है दिन राती, नाम तेरा मैं दिन रात जपदा रहां, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो।
1: हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हौ मैं मारी।
0: औखद दा भाव है दवाई, सर्व रोग को औखद नाम, सारियां

इको ही डॉक्टर है सारिया दवाइया की इको ही पुड़ी दिंदा कहिंदा हर हर नाम औखद मुख देवे एला गुरसिखा आ मैं तेनू दवाई देन लगा ये मुख दे राही अंदर जानी है ये किवें।

भी ईट भी मैरी नहीं, खाओ पियो मौजा करो, ये जग मिठा अगला किसने डिठा। ये खान पान वास्ते नहीं मिलया सी, ये मिलया सी आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम बसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। मैं तेनु इस करके दिता सीगा बाणी पढ़िया कर ते बाणी सुनिया कर। अज गुरमुख प्यारियो ध्यान मार के वेख लियो, साडे कोल बाणी पढ़न जोगा भी समा नहीं रह गया, बाणी सुन जोगा भी समा नहीं रह गया। असी तां घर विच जिहड़ी अमृत वेले श्री दरबार साहब दे विचों आसा जी दी वार दा कीर्तन चल रहा हुंदा, असी तां अपने घर दा टीवी भी आउण करन नूं तैयार नहीं हुंदा कि साडी नींद ना खराब हो जावे, उह भी सुनन वास्ते तैयार नहीं। महाराज सच्चे पातशाह तू गहर गंभीरा है, तेरी डूंगी विचारधारा है, तू अपौच है, साडे इंद्रियां दे नाल तेरे तक पहुंच।

महाराज मेरी इज्जत पत रख लियो, सच्चे पातशाह मेहर करी कृपा करी, जग जीवन जग नु जीवन देन वाले वाहिगुरु परमात्मा वाहिगुरु जी, हर जुग जुग भगतो पाया पैज रखदा आया राम राजे। महाराज तू सारयां दी पैज रखी, सारयां दी इज्जत रखी है, मेरे ते भी कृपा करी। मैं जिंदगी विच बाकी सारा कुछ कीता है पर जप तप संजम धर्म ना कमाया। मैं जप भी नहीं कीता, तप भी नहीं कीता, सिमरन भी नहीं कीता, की करेंगा राम सिमर पछताएंगा, मन पापी जीरा लोभ करता है आज काल उठ जाएगा। वो जरा मुख किवें लैके जाएगा, सिमरन भजन दया ने कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे तो क्या मुख लैके जाएगा। वो केड़ा मुंह लैके आ गया तू, ये मुंह लैके आ गया, मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे असी। जदों आए साडा मुंह सारिया ने चुमिया, साडा मुंह वेखण वास्ते सारे ताबले हुए, पर जदों चले आ साडा मुंह ढक दिता है। इहदा मुंह देखण नूं जी नहीं करदा हुण, क्योंकि इस मुंह दे नाल कुछ कीता होवे तां मुंह नंगा होवे, इस मुंह दे नाल नाम जपया होवे तां मुंह दिखाउण जोगा होवे। इह दाग दोष मुंह चलिया लाए, दरगाह बैसण नाहीं पाए, अनेक दोष ने अनेक दाग लग गए ने इस मुंह नूं, मैं मुंह दिखाउण जोगा नहीं रह गया। गुरु रामदास जी तुसीं कृपा करो, तुसी मेहर करो, तुसी तरस करो, मेरे ते तरस करके महाराज सच्चे पातशाह पिछले औगुण बख्श लै प्रभ आगे मार्ग पावे। सतगुरु जी कृपा करदे हन, महाराज मेरी इज्जत पत पैज रखना करो जी। सतगुरु जी ने कृपा कीती है, रहमत कीती है, धन धन सतगुरु साहब श्री गुरु रामदास महाराज पातशाह जी दा कोटान कोटन धनवाद है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का कोटान कोटन धनवाद है। आप रब वर्गियां प्यार वर्गियां संगतों का भी तह दिलों धनवाद करते हैं, समुचे प्रबंध का तह दिलों धनवाद है। अरदास करांगे गुरु रामदास के चरणों च महाराज सच्चे पातशाह, अपने गुरु ग्रंथ गुरु पंथ नूं चढ़दी कला विच रखी। आओ समाप्ति दियां पंक्तियां पढ़ के खिमा दे जाचक

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646, 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811, 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं वो आओगे, कोई 1 लाख लेकर आओगे, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा, और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया, उसमें 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह लगाए। ये सन 1988 की बात है, 89 की। उसमें 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का विवाह कर दिया, 3-4 लाख रुपए लगाए, और कर्मचारी अधिकारी कोई 2,000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000। और फिर क्या हुआ, उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था इतना 4 लाख में लड़की ब्याही है, और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा मर गया, अरीब के बनेगा, अब गधा बनेगा वो, और जिस जिस से ले रखे थे उसके लठ मारेंगे, डोवेगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से ये स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी उस समय किसी कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था, विवाह होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा है भगवान, अब कह तो दया करे परमात्मा पुत्र हो, रुआ भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब गर्भ रहा उसकी पत्नी को, परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो, और वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, पांचवी भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहां अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहेब के हुक्म बिनानी तरवर पाथिलंदा। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आऊंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था, और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि अभी कहां मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे, फिर बाद में पूछा कि गुरुजी यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका, तो अगले जन्म में वो 1,000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे, ले जाओ जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लू कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गिरजैन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए, तो उससे पूछने लगे भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गाकर नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो उन्हें। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। दो ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया। वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखे, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी, भाई लाला जी हमने 200-200 रुपये कर्ज दे दे। बोले ले ले भाई, वो पक्का करे थे। वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी है। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का करे करना भाई हम तो 6 महीने के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले। उन तो ठगना था ही वो। उन्हें दोनों ने अपने 200-200 रुपये या जैसा भी 100-100 या 500-500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे, एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था, एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था, एक वहां खड़ा था पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था। वो दोनों वहां रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल, उसने उसके 500-400-100-200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी पोटली कड़क बांध गए, उस बैल लेकर गया था, उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर, ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे। एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया, बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में। वो बैल हाथ से रस्सा छुटा कर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने, हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में, और हाथी मारे किल की चिंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया कर, हाथी किलकी मारे रो और लीद कर, उसने सोची मेरा निकिया गया सिंगाला, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल, 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए, उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु होगी। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन नौ के नौ दोनों ने पैसे रख दिए, एक सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पर नहीं उठते ही। लाला जी ने ठाकर बार गली में फेंक दिए, अकमार मेरे लख कितने ले जाओ, हम ना मैं ना लू ही अगले दिनों में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे धरे उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा मैं ना लू कती भी। वो बार फेंक है, उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठा के उसने भी वैसे तक गेरे क्यों कर, क्योंकि देना पड़े वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा थारे ते बचाव रखे। तो उसने सोचा वे साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ, सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो, इसका कोई धर्मपुन में ला दो लाला जी के नाम ते। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रस्ते पे, और एक कुआ बनवा दो, उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम के उसके नाम की धर्मशाला। और तुम यूं करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना और ना उस कुएं में पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा, फिर तुम बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूं इतना कर दो। अब वो ने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रस्ते पर जो स्टेशन से उतरकर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के, स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया, उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया, और वो कुआ बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहां यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाओ, वो दोनों लकड़े लट लेकर खबरदार दे यहाँ आगे होता, चलो यहां से। तो वो कहने लगे, भाई क्यों तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते। हकी लाला जी ने पूछ लो, भाई इसने मना कर रखा है कि यहां हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखे ना इसमें किसी को रुकने देना ना इसमें पानी पीने देना। इवाम आदमी ने बोले, बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते आयो, यो कैसा लाला जी हुआ, सब गाड़ी देते जाओ। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, वो समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ी सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लट ले गए, खबरदार जो इधर आया था। वो कहने लगा, अरे क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूं। ने बोला, बार चल तू किससे का रिश्तेदार हो। इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, मारी ड्यूटी ला रखी। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, उसने उससे कहा, रे तू बड़ा निकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था तने, वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, और वो दो मस्टंडे छोड़ रखे तन, ना पानी पीने देते किसी ने और ना हुआ रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या। अब उन्होंने सोचा, भाई कौन सा कहां धर्मशाला है, कौन सा कुआ है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप, कह के मैं झूठ रहा हूं, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआ बनवा रखा है और वहां दो खड़े हैं, वो लठली है, इन्हों किससे न्याण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची, देखू तो कहा, वो उस दोनों जने आए, देखे तो वह खड़े सामने लठ गए, वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी ने। तो कहने लगे, भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, नो बोला मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए, भाई ये दो जोड़े हाथ मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा, तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपने गए और फिर मजदूरी करके अपने गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए, आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचता था या कोई दुकानदार था, और दूनी ब्रांड में ट्योरी थी उनकी। और आज वो प्राणी ही किसी का 10 रुपए आ जाते हैं ना गर्दे का वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपए का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपए वापस दे दिए, ठुक करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूं, इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे, वो उसके मुंह का नहीं देखे। ए बेबे ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहां तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से, जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठाले जान लोगे और तू वापस देन आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आपके पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बन के कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वो ही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास आज भी कम से कम चार भक्त आए थे, न बोले जी रस्ते में 100 रुपये पड़े पाए, अब वहां देवा किसने यहां दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहला के सचिथी थी नो देख के ठा करते को देखते ना ले हरगोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे, और जा रहा था एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहां से आए हो, कहां जा रहे के? वो कहने लगा कहां जा रहा हूं, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए, किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालूं था, सारे देख लिया मैंने पाए। कितने पैसे थे तेरे भाई? के 5000 रुपये थे, ये नोट थे। नो बोला नो के जो बन उसको निकाल के दे दिए कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को, नो बोला राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह रह कराते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना, परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, कमी नहीं रहेगी, और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था, एक चोर था। उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला, उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक बैल ने चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात बहुत पुराने समय की, तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा तू, या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाय हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची चलो उस जिसका बैल चुरा कर लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने एक वर्ष या दो डेढ़ वर्ष के बाद, क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं बहुत अच्छी स्थिति के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया, उनको बेच ब्याज के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा, वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता, उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लूं, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नुखागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं, इसके और इसके आज चार बैल बंधे हुए हैं, भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं। और उसने वो वहीं सो रहा था, किसान उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सो रहा था, ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूं, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूं। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूं। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूं था वो मेरे अति होता कोई ना, इसलिए तुझे जगाऊ ना, मैं कितने जगाऊ, अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए थे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो अपना वो पैसा मेरा न्यू गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे दो बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूं, और तेरा ये चार बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई, अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांप रहा है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं उस दिन, तू बहुत गरीब था, तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तने ये जड़ी पूछ ली तई बताऊंगा, बैठ जा भाई, अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले, तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया, परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूं मैं कैसे, मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है, और तू चल तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला कुछ भी बराबर, पर मुझे या जड़ी बता दे जो नूर सेठ होया करे। गुरु जी के पास ले गया, उसको बताया, फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति गणा ढेर आदमी हूं, नीच व्यक्ति हूं, और मैंने इसके तीन बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं, और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं, और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं, मैं या युद्धंतर पूछना आया हूं। परमात्मा बोले ले भाई युद्धंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तुम भी ऐसे सुखी हो जाएगा, पर आज के बाद चोरी ना करिए, कान पकड़ लिए, अगर नहीं गुरुदेव सपने में भी नहीं करूंगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानु ने भी समझाऊंगा भाई।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
5: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਲੰਬਰ ਪੈਕੇਜ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗਰਾਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਟਰ ਤੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 403-433-5555 ਯਾਨੀ 403-433-5555 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 3501 23rd Street ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਊ ਪਾਇਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੈਟੀਓ ਡੈਕ, ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਜ ਫਲੋਰ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰ ਬੇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਊ ਪਾਇਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-439-7700 403-439-7700।
3: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 8616 44th Street South East Calgary।

0: परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: गुणात्माओं, परमात्मा पर विश्वास जब हो जाएगा आप पर, आपका आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा, मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस नवला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा तू, एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर, अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद, के ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे, आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था, फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि इसका लोन मैं क्यों रखूं अपने सिर पे। तो उसने कहा भी मैं ना दूं एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया। तो पुणात्माओं, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, ये सच्चाई है। कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो सच्चे दिलते हैं। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेत्र खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो, और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको, उसके विषय में परमात्मा बताते हैं जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि विष है, कहते उस कण को भी कौन जी बदर, ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, के फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी, और ये एक दूसरे से लूटना खसोटना बुरी नजर रखना बुरा कर्म करना, ये एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको, अब तो हम अनजान पड़े में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा, और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है, हमारे भाग्य से भी अलग, किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हो, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं, और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, जो चौका तुम दे वो नेता, सत्र ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं, या कोई खेत में हल जोतता है, या मजदूर कस्सी से खोदता है, करोड़ों जीवों को मारकर श्याम को विश्राम करता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे, मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती, इन नकली गुरुओं को नकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, इनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बने था, और पाप इतने बने दिन में गिनती नहीं हुए। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, ये कबीर पंथ में भी इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है, और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावा था, और आपके जो कुछ पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की ब्रांड माटी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, दो टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, सामने गुटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे, इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग माने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण ना मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती है उनको एक डर विशेष बनेगा और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी, जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहन की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती हैं। अपुन आत्मा कोई चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करें। और वो नो सोचे कि ये तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जावेगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा। वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में अपने आत्मा। यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता। वो डर भी था और सच्चाई भी थी, और उससे ना डर के उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा, और भय बिना बात बना नहीं करती। और डर कब लगता है? जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बालक, अबोध बच्चा, सर्प को पकड़ लेता है। एक बहन बतावा थी कि मेरी लड़की का लड़का आंगन में खेल रहा था, पशुओं का आंगन था, पशु खेतों में चले गए थे और उसकी माँ उसको वहां छोड़कर पशुओं का गोबर बाहर डाल रही थी। एक सर्प आ गया, काला सर्प, उसने जाके उसको अच्छी वस्तु जान के नू पकड़ दिया। पकड़ते ही वो हाथ पर डस गया, उसने वो छोड़ दिया, वो खिसक गया। कुछ देर के बाद उसका हाथ सूजना शुरू हो गया। अब वो बच्चा बता नहीं सकता, उसकी माँ पूछे क्या लग गया। उस समय तो उसको कोई बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सी वो बोलता था, ज्यादा भाषा नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बताया कि इसके किसी विषैले जानवर ने काट रखा है। फिर बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसा था, क्या था, किसने डस दिया? वो कहने लगा, भैंस की पूंछ कैसा था, काला काला। अब उसको ये नहीं मालूम था ये सांप था, उसने वो सांप पकड़ दिया और उसने वो डस दिया, तो मुश्किल से जान बची उस बालक की। एक हफ्ते के जाकर ओसमाया वो। तो कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा स्याणा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो सर्प को इतनी दूर से देखकर भाग लेगा और उनको भी कहेगा सर्प आ गया, भाग लो, सांप आ गया। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आप जी अबोध बालक हो जो गलतियों पर गलती कर रहे हो, इसका बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको इस तत्व ज्ञान से ये ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी उठ जाएगी, आपको विष दिखाई देगा, वो सर्प दिखाई देगा जो कर्म आज कोई कर रहा है, चोरी जारी रिश्वत का या दहेज आदि ले करके अपने कर्म बिगाड़े हैं। ये नहीं होगा फिर आपसे, हो ही नहीं सकता, और इसकी आवश्यकता कति नहीं। हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं? अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन ली ये कथा, ये सच्चाई है, सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी, और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूल लगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया, आपको वर्तमान में दिखा देंगे। रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हम सभी के जनक हैं, कुल के मालिक हैं, हम सभी आत्माओं के एकमात्र वो हितैषी हैं, और इसीलिए वो अपने सतलोक को छोड़कर, इसे सुंदर इतने अच्छे लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, गंदे लोक में कुछ समय रहते हैं, और उस समय हम काल प्रेरणा से उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। पुण्यात्माओं, एक जब परमेश्वर यहाँ आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे ब्राह्मण, और उनका बहुत बोलबाला था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य कर बना रखे थे और वो उनका प्रचार किया करते थे। महर्षि रामानंद जी द्वारा निकाले निष्कर्ष कंक्लूजन जो उन्होंने वेदों गीता और पुराणों को पढ़ा था, उसके आधार से वो अन्य जनता को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने एक उस ऋषि को, विवेकानंद नाम था उसका जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसका सत्संग सुना। वो वैष्णु साधु थे, विष्णु जी की महिमा सुनाते थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बताया करते थे, श्री कृष्ण जी को परम शक्ति बताते थे। परमात्मा ने प्रसन्न किया उस विवेकानंद से कि महर्षि जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप जी कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी का कहीं जन्म नहीं हुआ, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने शिव पुराण में कथा सुनी थी एक ब्राह्मण से, रुद्र संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है पांचवें छठे सातवें आठवें अध्याय में कि सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस शक्ति से दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और शिव की उत्पत्ति हुई। और देवी भागवत में लिखा है ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। अब उसके पास वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसने उठाकर देखी विवेकानंद ने, अब परमात्मा के दिए ज्ञान से उसको कुछ पढ़ने को मिला कि सचमुच इसमें कुछ लिखा तो है कि विष्णु जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म भी इन्हीं से हुआ। लेकिन उन आत्माओं जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती यह बात आंखों देखकर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि विवेकानंद और हम सभी ने पहले कुछ भी नहीं सुन रखा था, अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, और लोक वेद इतना सुन रखा होता है कि आंखों देखकर भी सदग्रंथों को विश्वास नहीं करते, इसमें जो लिखा है यह सच्चाई है, हम उस लोक वेद पर दृढ़ रहते हैं। ऐसी स्थिति विवेकानंद की होगी, आंखों देखकर भी नहीं माना। दूसरा कारण ये था, उसको पता था कि संस्कृत मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता, जितने श्रोता है कह दिया कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे, तिलक लगा रखा था जैसे वैष्णव साधु लगाया करते हैं। विवेकानंद जी ने पूछा कि तू कौन है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है, तो परमेश्वर कबीर जी के बोलने से पहले ही श्रोता कहने लगे ये तो उस नीरुधानक का बेटा है, दुल्हे का बेटा है, इसका कबीर नाम है, इसकी तो आदत खराब है, ये किसी भी ऋषि महर्षि के पास जाकर उठपटांग बातें करता है, सबको ऐसे ही पूछता रहता है। एक आध श्रोता ही ऐसे बोलने लगा तो विवेकानंद ने पूछा कि तू इतनी गहरी बातें सदग्रंथों की बोल रहा है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है। कबीर परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैंने गुरु बना रखा है। उस विवेकानंद जी ने पूछा कि तूने कौन गुरु बना रखा है, कि जो आपने बना रखा वो मैंने बना रखा है। अब विवेकानंद जी कहने लगा तू सीधे मुंह बात कर, तू जुलाहे का सूदर का लड़का और मैंने ब्राह्मण और मैंने महर्षि रामानंद पंडित से नाम ले रखा है, वो तेरे जैसे सूदरों की तो शकल भी नहीं देखता, तू झूठ बोलता है, कपटी है, देखो रे लोगो ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे गुरुजी की बेइज्जती करता है, शूद्र होकर के मेरे स्वामी जी से इसने नाम ले रखा है, कल देखना इसकी वहां श्यामत आएगी, तुम सभी आना और गुरुजी के सामने हैं इसको लाएंगे बुलाएंगे और तुम देखना ये कितना झूठा है, इसने कोई नाम नहीं ले रखा। अपुणात्मा अगले दिन 10 मस्टंडे पकड़ के ले गए कबीर परमेश्वर को, बालक को 5 वर्ष के बच्चे को रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी झोपड़ी के अंदर अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे, सामने पर्दा लगा लिया था, विशेषकर उस दिन

0: माए मक्खी निकले और बड़े मुंह में के हाथ भी ना उठे जीव का, और पता नहीं एक मिनट में के कुकर्म करने तैयार हो जाए। तो ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी को विद्या का, किसी को जाति का, किसी को पद का, किसी को धन का, ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ गुरु और शिष्य की आपस में जो वार्ता होती है थोड़ी सी वो सुनाएंगे, और जो दास आपको सुनाने जा रहा है उसका भूमिका बना रहे हैं। आड़ा पड़दा लाए करे रामानंद बुजंते, दास गरीब कुरंग छवि ही अजर डाक कूदंत। कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति वो बोलत है बलि जाऊं में। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी की महिमा आंखों देखी अपने उनके द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान से मैं ही लिख रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि से देखकर लिख रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना रामायण और कलियुग के अंदर ज्यों की तू अपने सिंपल लैंग्वेज में यथार्थ चित्रित कर दी थी, लिख दी थी, इसी प्रकार गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की, परम पूज्य कबीर जी की वो यथार्थ घटना लीला अपनी अमृतवाणी में बोली, कैसे कैसे वार्ता हुई थी उनकी, तो गरीबदास जी अपनी तरफ से बता रहे हैं। इसलिए यहां गरीबदास शब्द आ रहा कबीर जी के स्थान पर। कबीर परमेश्वर क्या बोले, रामानंद जी ने पूछा कौन तुम्हारी जाति है और क्या तुम्हारा नाम है, तो गरीबदास जी कहते हैं आधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने एक शिष्य सुयोग्य शिष्य को व्यवहार करना चाहिए ऐसे कर रहे हैं। और क्या बोले, बोलत है आधीन गति, आधीनी से बोल रहे हैं गरीबदास जी, कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं उस परमेश्वर के समर्थ शक्ति होते हुए इतने भी नम्रता से बात कर रहे हैं छोटे से जीव के सामने। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंते। पुणात्मा हो इस परमात्मा की, परमात्मा खड़े हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में, महर्षि रामानंद जी बैठे हैं और अपने एक जीव को सद्बुद्धि देने के लिए परमात्मा कितना कष्ट उठाते हैं। अब रामानंद जी गालियां दे रहे हैं भगवान को और वो करबद्ध खड़े हैं। तो पुणात्मा हो हमारा हितैषी कौन है, एक शराबी बालक लड़का, बाप ने बुंडी अच्छी कह देता है और वो बेचारा आंखों मासू बहाता बैठ जाता है और फिर भी ये सोचता है इसकी नशा उतर जाएगा तब ये ठीक बोलेगा मुझे। तो पुण्यात्माओं यही स्थिति आज हमारी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
3: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन, धार्मिक कथा, ताड़ी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने, जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
2: प्रोग्राम संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4667।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू, साउथ वेस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह दी जानकारी लेन लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: और जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले, तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: और जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मन अलवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसे भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किए जाते ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 तक ते शाम 5 to 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4060 या विजिट करो www.punjabiradio.ca।
2: कहान

माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे।

0: सत बुझाया सत बुझाया।
1: पौड़ी नजर करे जे अपनी तन नजरे सतगुर पाया, जे जीव ते जन भ्रम्या सतगुर शब्द सुनाया।

परम पैपुले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास।

दर्शन परसया गुरु का जानम मरण दुख हो सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सचे पातशाह मल जानम जनम दी सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी तलंगा महला पहला यानड़ी मानड़ा काय करे आप नड़ा कर हर रंग की ना माने यानड़ी मानड़ा काय करे आप नड़ा कर हर रंग की ना माने सह नेड़ा धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे पैकिया दे सलाइया नैनी भाव कर सिगार ता सुहागण जानिया लागी जा सह तरी प्यारो यानी वाली क्या करी जा तान कंत ना पावे करण पलाह करी बहु तेरी सा तान महल ना पावे विण कर्मा किस पाया नाही जे बह तेरा धावै लब लोभ अहंकार की माती माया माही समाणी इनी वाती सह पाया नाही भई कामण यानी जाए पुछह सुहागणी वाह किन्नी वाती सह पाया जो किस करी सो भला कर मानिया एक माता हुकम चुकाइया जाका प्रेम पदार्थ पाइया कौ चरणी चित लाइया
सहु कह सो की जा तन मनो दीजा। ऐसा परमल लाइया एव कहे सुहागणी पैणे इन्नी बाती सह पाइया। आप गवाइया ता सह पाइया और कैसी चतुराई। सह नजर कर देखा सो दिन लेखा कामण नौ निद पाई। अपने कंत प्यारी सा सुहागणा नानक सा सबराई। ऐसा रंग राती सहज की माती अहन सा पाई समाणी। सुंदर साई स्वरूप विचखणा कहिया सा सियाणी। ऐसा रंग राती सहज की माती आनस भाई समाणी। सुंदर साई स्वरूप विचखणा कहिया सा सियाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तलंग महला पहला यानड़िए मानड़ा काए करे आपनड़ा घर हर रंगो की ना माणे।

0: जब माली दान मले छा खाई अंतर पूजा पड़े कते बासा जब तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला
1: मार्स खाने करी निवाज छुरी बकायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरा नाथ उना पिया वे ओई साथ।

टीका तिड़ तो टीका खाई हाथ छोरी जगत कर साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मले ताले पूजे प्राण अपाख्या।

0: किन घर पूज करावा, पूज करावा।
1: श्लोक महला पहला, जेकर सुतक मनिए सबते सुतक होए। गोहे अत

0: पंड मंगण भी आओ। पंडो होवे दोस्ती पंडो चल राव, पंड हुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। पंडो ही पंड उपजे पंडा बाजना कोई, नानक पंडा बायरा को सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाखिए आगा रत्ती चार, नानक ते मुख जले तित सचे दरबार। पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कटिए किता पो अपना, आपे ही देखा सदिए जरण नाही अच्छे आकायत गार बंडिए मदा किसना किए। पढ़े अखर के हो बुझिए मूर्ख
1: जरण नहीं है जग तक आयतार बंदी है, किसे ना किए पढ़ करे हो बुझिए।

0: करनी सा करनी सा
1: थोड़ी दार संजाप निहरता के पारावार आप कराए साथी फिर आप कराए मार इकना गली जिन्हें जिन्हें चढ़े विषय आप कराए करे आप मगर

सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रियायत देग तेग फतेह।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4367।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक

पौड़ी नाव तेरा निरंकार है, नाए ले नरक ना जाइए। नाव तेरा निरंकार है, नाए ले नरक ना जाइए। जियो पिंड सब तिशदा, दे खाजै आख गवाइए। जे लोड़ है चंगा आपना,

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज

की सतसंगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी, सतसंगत मिले सो। जदू संगत विच बह के सिमरन करन कम किवें आएगा। मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो वाह एग्जाम्पल प्रमाण दे देना। एक प्रमाण होर तुसी रहरास विच पढ़ोगे। मैं कहिंदे लाइव तो क्या ये गल अजे विज्ञान की पकड़ विच नहीं आई। साइंस बहुत चंगी चीज है, लोगों की सुविधा वास्ते जिन्हिया चीजा बनाईया ने साइंस ने बनाई ने, पर असलियत यह है जो अकाल पुरख रब जिन्हें सृष्टि साजी है, जिन्हों आप रोज पढ़ने करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं कोय, नानक तिस बलिहार ने जल थल नहीं अलसोए, धरती पानी आकाश विच जेडे रब ने सारी सृष्टि खड़ी की है ओदी आग्या तो बगैर कोई चीज प्रगट नहीं हो रही। जेडी खोज रब ने दुनिया के भले लिए प्रगट करनी हुंदी ओ किसे दी बुद्धि विच रब वसद और वह विज्ञानी प्रगट कर दिंदा है। जदों रब चाहुंदा है वी आह चीज प्रगट होनी ओ उस जेन विच वसद उत्तों खोज प्रगट हो जाती है और दुनिया च ओदी वड्याई हुंदी है। विज्ञान ने बहुत कुछ बनाया है। एक चीज विज्ञान की पकड़ विच आई है वह भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच है। तुसी किसे नू याद करो, अज दे पढ़े लिखे बच्चे छेती समझ लैणगे, किसे नू याद करो अचानक कई बार उहदा फोन आ जांदा, तुसी कहो हुणे ही याद कीता सी, मैं तां तैनू अज ही याद कीता सी। किसे नू याद करो कई बार अचानक उह मोहरे मिल पैंदा। इहनू विज्ञान ने कहा टैलीपैथी। किसे नू याद कर रहे हो जो सुरती विच कर रहे हो उहदे तक पहुंच रहे, किसे बारे जो सोचोगे उहदे मन विच उह ख्याल शुरू हो जाणगे। इसलिए पातशाह ने बचन कहा भलिया मन विच माड़ा ना सोची होए, चित विच किसे दा बुरा सोचेगा उहदे तक पहुंच जाने और तैनू तेरा सोचिया दुगना होके मिलना। बुरा ना सोची, जो तू सोच रहे हैं किसे दा बुरा सोचेगा चित विच उधर पहुंच जाने ते उधरों दुगना होके तेरे वल आने। इसलिए कहा पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत, चित विच किसे दा बुरा ना चित। विज्ञान ने इन पकड़ विच लिया टैलीपैथी। जदों किसे बारे बुरा सोचोगे उधर भी वह ख्याल अपने आप ही शुरू हो। खलील जिबरान ने एक कहानी लिखी है और परवन्ना साहब ने अपनी पुस्तक विच भी लिखा है। देखो बंदा कमाई करके ना FDR बना, बच्चों तो भी लुको के रखता है, पता कहदे लई औखे वेले कम आएगा। इस लोक विच पैसा कम आ सकता है पर जदों बंदा अखां मीट जांदा दसो कोई कम आउंदा है नहीं, उत्थे फिर कम नाम आउंदा है, उत्थे फिर पैसा कम नहीं आना। जदों तुसी FDR बनाओगे तुहाडी सारिआं दी होणी है, ते जदों फार्म भरदे ने उहदे विच कॉलम आउंदा है उह कहिंदे जी FDR किन्ने लख दी बनाउणी है, चलो 5 दी बना दिओ, 2 दी बना दिओ, जिन्ने किस कोल पैसे। कहिंदे जी फिर आ कॉलम भर दिओ, की लिखिआ है, नॉमिनी किहनूं बनाउणा है, तुसी उहनूं पुछो व्हाट इज़ द नॉमिनी, इह क्यों लिखणा है। कहना जी जे तुहानू कुछ हो गया फिर किनू देने पैसे, इहदा मतलब वह शरीर जिउंदे तक ही है, अखां बंद हो जाण वह पैसे साडे नहीं, पर जपिया होया नाम अखां बंद भी हो जाण उत्थे तक जाएगा। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, जय महा पहान दूत जम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, उत्थे तक के कमाई जाएगी। और पातशाह ने कहा सिमरन किदां करना सुन पाई, महाराज किवें करना है। कहिंदे जिवें कुंजां करदियां ने, उदाहरण ने बाणी विच, इह विज्ञान दी पकड़ च नहीं, जिवें कुंजां करदियां ने, रुत बदलदी है, कुंजां सैकड़े मील उडारी मार के वख चलियां जांदियां ने, उह अपना खाणा चुगदियां ने, अपने बच्चियां नूं चेते करदियां ने, ना उहनां दे बच्चियां नूं अजे खंभ लगे ने, ना उहनां दे बच्चे अजे उड़न दे योग होए ने, पर वह सैकड़े मील दूर बैठे बच्चे पता किवें पलदे ने, कुंजां भोजन खा के चेते कर दियां अपने बच्चों नूं, उहदा खाधा होया भोजन उहदे बच्चों तक पहुंच जांदा। इतिहास विच वी कहा है छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं सिख ने शायद भेंट किया, महाराज कहिंदे नहीं खाणा भाई, जदों मंगिया सी उदों नहीं दिता। उह कहिंदा जी मैं ते हुणे आया अजे, महाराज कदों मंगिया, मैं ते अजे हुणे ही मत्था टेकिया, मैं ते तुहानूं मिलिया ही हुणा महाराज, शायद कदों मंगिया। कहिंदे रस्ते विच साडा सिख भाई कट्टू खांसी नाल दुखी सी, ओ शहद मंगदा सी, तू उहनूं शहद दित्ता नहीं,
ਅਖੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਖੀਰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵੀਆਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਲਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਹਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾ ਸਿਮਰਨ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕੁੰਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਲਾਉਂਦਾ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਕੁੰਜਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ, ਤੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਖਿੱਸੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ, ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਵ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ,

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सब तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: That is,

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आदि गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: मानडा काय करे है आपनडा कार हार रंगों की ना मान है
1: वाह वाह
0: आनड़िए

0: महापुरुख जन नाम जपण वाले कहते हैं ये गुरसिख भैने इन गलों राही इन चीजा राही विचरदा हो समर्पित होंगे प्रभु प्राप्ति होंगी है।
1: आप गवाई है ता सह पाई है और कैसी चतुराई
0: चतुराई भी चतुराई स्याणपा कित काम न आई है। तुठा साहब जो देवे सोई सुख पाई है। महाराज जी का वचन है आप गवाई है अपना आपा अर्पण कर दे लीन हो जाइए ता सो पाई है और कैसी चतुराई होर चतुराई कम नहीं आती है।
1: सहो नजर कर देखा सोजन लेखा कामन नौ निद पाई।
0: उस प्रेम दे महासागर प्रभु पति की नजर पै जाती है ना बस वही दिन समय सुहागना है। सो नजर कर देखा सो दिन लेखा कामन नौ निद पाई। फिर इस जीव रूपी प्रेमता में नौ निधियां अठारह सिद्धियां झोली च पै जांदियां हन।
1: आपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सब राई।
0: भरा भी उसका सन्मान करते हैं जो कंत नूं पा जांदे सब जगह जो भाई कन्हैया जी ने भाई मनी सिंह जी ने बाबा बुढ़ा साहब ने सारा खालसा पंथ भी उन्हां दा सन्मान करदा। भरावां वाली उह हुंदी है बल हुंदा है अपने कंत प्यारी सा सुहागण भागशाली ते भरावां दा वी माण है।
1: ऐसा रंग राती सहज की माती अहन सुभाए समान।
0: इस तरह प्रेम विच रंगी हुई सहज विच लीन हुई हुई मस्त हुई हुई उत्ते अभिमान विच मस्त है इत्थे सहज विच मस्ती दा महाराज जिक्र करदे ने जो आनंद

परब्रह्म परमेश्वर अपने सेवक ते दयालु हो ते मैंने गुरमुखां दी चरण धूर बनाया। बड़े गहरे शब्द हैं, बारंबार शब्द हार्दिक तौर पर धन्यवाद बड़ी एकाग्रता ते प्रेम नाल आपने सरवण किया। बारंबार सारे प्रबंध का माननीय हरग्रंथी साहब जी का आप सारिया संगतां का सारे खालसा पंथ का दास रोम रोम धन्यवादी है। कोटान कोट शुकराना गुरु रामदास महाराज जिन्होंने अपने चरणों की हाजरी बख्शी है। आओ सारे मिलके इन दो पंक्तियों का पाठ करिए, फिर खिमा प्राप्ति होइए।

0: मीटिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी आज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी। सबको प्यारा किए ये सब उसी के बच्चे हैं, और यह भांग पैदी काल में यहाँ की बकवाद बेमतलब की गुटी ला ले, कोठी बना ले, कार ले ले, इससे उड़ जा दिया। और फिर परमात्मा ने सोचा इसने कर लेते कह लेते जो बुंडी अच्छी मुझे बोल रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा ना फिर देखना यो किस तरह मुझे व्यवहार करेगा मेरा बच्चा। तो वही सती थी रामानंद जी के साथ बनी। परमात्मा बोले, जात हमारी जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देता हूं और किसी के पास ज्ञान नहीं है। और पुणात्माओं वेद गवाही देते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96-96 के मंत्र 16-20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, और भी बहुत स्थानों पर है। यह स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा है, ऊपर तीसरे धाम मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाता है। जो तत्व ज्ञान वही बताता है आकर के अपनी महिमा आप ही ठीक ठीक बता सकता है, और कोई नहीं जानता उस परमात्मा की द्वारा रची हुई सृष्टि को और उसके अध्यात्म ज्ञान को। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं जात हमारी जगत गुरु, और परमेश्वर है पंथ। मेरा पंथ यानी कौन सा मार्ग है, जैसे कोई तो विष्णु जी का पंथ है, वैष्णु है वो विष्णु।

0: तक का ज्ञान जानते हैं, विष्णु जी तक का, और किसी का नाथ पंथ है वो शिव जी तक का ही मार्ग है, वो शिव जी को इष्ट रूप में मानकर वही उसी का मार्ग है, वही पंथ है। कोई ब्रह्म तक की साधना बताते हैं वो ब्रह्म तक का पंथ है, तो ये परमात्मा कहते हैं मेरा परमेश्वर है पंथ, मैं जो मार्ग बताने आया हूं भक्ति का वो उस परम पिता, उस परम अक्षर ब्रह्म का है, उस परमेश्वर का है, जिसमें गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरा वो उस परमेश्वर वाला पंथ है, परमात्मा स्वयं अपनी महिमा आप ही बताने आए, और मेरा नाम पूछते हो तो मैं वो परम अक्षर ब्रह्म हूं। अब यह बात रामानंद जी के गले नहीं उतरी, रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सृजन हारे। अब देख गरीब दास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया कि मैं परमात्मा हूं, तो इस बात का दुख हुआ रामानंद जी को और गाली देन लग गया, रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार तो दिखाई देता, साकार भगवान तो निराकार है। अब विष्णु जी का पुजारी और मूर्ति रख है सारे चित्र ला रहा और कह स्वर्ग में जाऊंगा वहां भगवान रहता है विष्णु जी, और फिर भी उसके लोक वेद से मान रहा है कि भगवान तो निराकार होता है और तू दिखाई दे रहा है। और फिर क्या बताते हैं कि तू मोमन का पाल हुआ। अब जैसे मोमिन माने मुसलमान, तुझे वो मुसलमान जुलाहा नीरू उठा कर लाया था, तेरी मां का बेरा ना तेरे बाप का, तेरी जात का बेरा ना तेरे धर्म का, कुजात तू अपने आप को भगवान कहता है। रामानंद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं, तुम मोमन के पालवा यानी उस मुसलमान जुलाहे के घर पर तू पल रहा है और अपने आप को भगवान कहता है, तुम मोमन के पालवा जुलहे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति इतना दृढ़ विश्वास, मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बेने, दास गरीब अधम मुखी एता तुम गट फेन, मरत मरत बहु जग गए लखी न अस्थिर ठोरे, दास गरीब जिहान में तुम सा नीच न ओर। रामानंद जी परमात्मा को अच्छी बुरी बुरी बुरी कह रहे, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। कहते हैं तू कुजात है, कुजात यानी तेरी जात का बिना बेरा, इसलिए तू बकवाद भी घनी कर रहा है, अपने आप को भगवान बता रहा है। अब क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में, परमात्मा कहते हैं ए स्वामी, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने उनको गुरु बना लिया था, क्योंकि गुरु रामानंद जी को किस लिए बनाया परमेश्वर ने, ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि नहीं तो आने वाले समय में काल के दूत ये कह देंगे गुरु जी की आवश्यकता क्या है, कबीर जी ने कौन सा कोई गुरु बनाया था। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। अब वहां शिष्य और गुरु की भूमिका भी स्वयं करके दिखाई कि ऐसा होना चाहिए आपको गुरु शिष्य के बारे में, गुरु जी अच्छी बुंडी बोल रहे हैं और परमात्मा एक सुयोग्य शिष्य की तरह हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन फिर सच्चाई बता रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमर तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, और सारी सृष्टि यानी अनंत करोड़ ब्रह्मांड मेरे आधार हैं, और मैं ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर अविनाशी का परमात्मा हूं। सत्य माने अविनाशी, अविगत माने जिसकी गति जिसकी स्थिति से कोई भी परिचित नहीं है, वो स्वयं ही आकर बताता है, और वो फिर मारे गले उतरती नहीं, इसलिए बात अभी तक उलझरी थी। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में व्यापक सर्वंग, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हे लरे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग जुगता ढेल रे, गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाले। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ ना सकता कोई। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने बोले कि मैं तो तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो, थारी बिरान माटी कर रखी, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी के दो लड़के हैं, एक मर गया, ने सोचा है भगवान एक तो बच गया, और पहले दोनों थे, जब एक चला गया कम सी डाल डाली और दूसरे का नंबर आ गया जब के करने का, तो यहाँ सबको नो सकोड रखा है, चल इतनी ईप तब और तो बचेंगे, इतना ही हो गया सो गया, बाकी तो बचे रहेंगे, बाकी की क्या प्रोटेक्शन कर दिया तूने, यह सोच पहले थी जब एक लड़का मरा, तो ये अज्ञान हटेगा आपका। तो क्या बताते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे वो ही, ये मुझे ढूंढते फिरते हैं कि वो भगवान तो जो है ना सब सुख देता है, अकाल मृत्यु से भी बताता है, हैं हमारे आने वाले जीवन में जो संकट है उनसे भी बचाता है, तुम इस गुण युक्त परमात्मा की खोज में भटक रहे हो और इन काल के दूतों को फंस जाते हो, मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा, लेकिन हमारा जो वियोग हो गया बीच में, हमारे इस वियोग को अब कोई नहीं समझ पा रहा है, अपने आत्माओं परमात्मा आके न्यू कवे मैं भगवान हूं ना जच्चे, और मेरे जैसा दास बीच में बिचौलिया होकर बताओगा रही भगवान खड़ा भाई, फिर आदमी समझेगा सोचेगा विचार करेगा। अब जैसे एक समय जो है मंत्री आ गया उसमें गांव में, और कुछ व्यक्ति गांव के इकट्ठे हो गए जहां उसने आना था, और वो ऐसा सीधा साधा सा सिंपल अपने वे से आके वहां खड़ा हो गया उन व्यक्तियों में ही, तो जब वो आया उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था, अरे देखे थे वो मंत्री ना आया और वो वहां खड़ा है, उसने उसका धक्के मारे, नोले भाई मंत्री जी आन हो रहे हैं, और वो उसके साथ फिर गनमैन था वो कहने लगा रहा ये है मंत्री जी, सचमुच फिर लग गए उसका नहीं चौधरी साहब राम राम, अब वो आप ना जच्चा हो जाए इकला इकला उतरने कह दे मैं मंत्री हूं कि वो जाना नहीं थे नहीं पड़ा रहे तो क्यों गाड़ी गुड़ी को देखी को ना पैदल उतर कर दूर तो चल पड़ा बेचारा गाड़ी पीछे छोड़ा लोग ना सोचेंगे टोर माया है। तो इस प्रकार अगर भगवान आकर नो भी कह दे मैं भगवान हूं ना जच्चे किससे कह, और हमारे जैसा बताओगे उसके सौ सौ गुण और उससे हुए हुए बेनिफिट, फिर मरा बुद्धि माओगी सचमुच यू है परमात्मा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। कहने का भाव ये है कि रामानंद जी ने फिर कहा कि भाई बच्चा ये तो घनी बड़ी, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोल रहे परमात्मा, रामानंद जी के जगह घर करे थी कि जो न्यू कह है कि मैंने सारी सृष्टि रची न्यू है, तो उसकी आत्मा पकड़ी गई, उसने सोचा यू कदे फिर इससे निपटूंगा, कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे तो कुछ अच्छी बात बोला है। उससे पहले उसने अपनी कोई क्रिया करनी थी, एक मानसिक पूजा करे था रामानंद जी, विष्णु जी की मूर्ति जैसे स्वप्न में कोई स्वप्न देखता हो वैसे करता था, तो उसमें क्या करते हैं कर्म कांड के अंदर भगवान की मूर्ति के सब कपड़े उतार दिए जाते हैं और वो गंगा जल से नहाते थे, जैसे स्वप्न के हिसाब से एक प्रैक्टिस थी उसकी, मानसिक सेवा बोलते थे पूजा कहते थे, सेवा माने पूजा, तो मानसिक पूजा कर रहा था, जैसे भगवान की मूर्ति के कपड़े उतार दिए नहा दिए गंगा जल से, सब कपड़े पहना दिए धोती भी कुर्ता भी, और तिलक लगा दिया जैसे वैष्णो साधु लगाते हैं तिलक, एक लंबा डेताई का और ऊपर मुकुट रख दिया। अब सारा कुछ कर दिया, फिर देखा कि आज भगवान के गले में कंठी ना डाली माला। अब उसने सोची माला रखी दिखी अलग, सपने में जैसे होता है, उठाकर उसने सोची भी माला, अब माला ना डाला गले में तो पूजा खंडित। और उस दिन मुकुट रख दिया, मुकुट नवा दुआ कर भगवान को, मुकुट उतारा नहीं जा सकता, अगले दिन ही उतरेगा उसी समय, ऐसा उनका विधान है कर्मकांड का। जब मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, भगवान की बेइज्जती हुए। वह माला ना डाले तो भगवान फिर अधूरी श्रृंगार रह गया भगवान का, असमंजस में हो गया। उसने सोची लिया मुकुट के अंदर से माला को डाल देता हूं, वो माला मुकुट में फंस गई, नहीं गई आगे। अब रामानंद जी कोस रहा अपनी किस्मत को, हे भगवान आज मेरे तो कौन सी गलती होगी, आज मुझ पापी से क्या हो गया, पहली बार जीवन में आज यह भूल लगी मुझे, ऐसी क्या बात होगी, मेरे तो आज का सारा दिन व्यर्थ हो गया, मेरे से लगता है भगवान रुष्ट हो गया, मेरा तो पिछला जीवन ही नष्ट हो जाएगा, बड़ा चिंतित हुआ। आगे पढ़ता है, कोई मूर्ति बार नहीं है, मानसिक पूजा रामानंद जी कर रहे हैं। और फिर परमात्मा ने बाहर से कहा, 5 वर्ष के बालक के रूप में खड़े परमेश्वर ने, के स्वामी घुंडी खोलकर इस माला की गांठ खोल लो। और फिर माला गलदार, फिर वह गांठ ला दे दोबारा गले में भगवान के डाल के, आपने मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोचा, रे तेरा गजब यो भगवान खड़ा, बार तो कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं है, मैं कोई साकार मूर्ति नहीं रख रहा, शेगनी क्रिया कर रहा, मैं तो मन से कर रहा हूं, और इसने मेरे मन की बात बता दी। कहते आडा पड़दा दूर बगा और लीना कंठ लगा, कहां तो उसको एक जुलाहे का लड़का धारण कर कुजायत कुजायत कर रहा था, और फिर भगवान सामने दिखाई दिया, सीने से लगा लिया 5 वर्ष के बालक को, 104 वर्ष के वृद्ध ने। पुणात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको भगत कहते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म ने परमात्मा को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज बैठा, ब्राह्मण वर्ग बैठा था, और रामानंद जी एक नंबर के ब्राह्मण थे। बात भी यही अड़ी हुई थी कि वो नहीं मान रहे थे कि कबीर जी दुल्हे को रामानंद जी ने उपदेश दे रखा है। और उसी समय रामानंद जी ने देखा, बाढ़ में जाओ ये समाज, जिस उद्देश्य के लिए सारा जीवन ला रखा, 16 साल की उम्र में साधु बन गया था, और आज वो भगवान सामने खड़ा, ये समाज क्या देगा मुझे, ये सोचकर भंत ने भगवान को सीने से लगा लिया। अब जब परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर में हड्डी नहीं थी, इतना रुई जैसा शरीर था। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में उसमें लिखा है कि सैपरी आगात सुक्रम अकायम एसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जो है वो यहाँ तत्वदर्शी संत रूप में आता है, और उसका शरीर बिना नाड़ी के जोड़ जुगाड़ का होता है। सुक्रम अकायम, माता पिता के संयोग से बनी हुई सुकर सी उसकी शरीर नहीं होता, तो वही रामानंद जी प्रमाण कर रहे हैं। अब क्या होता है, रामानंद जी ने और भी बहुत से प्रश्न किए, परमात्मा ने सॉलिड उत्तर दिए। रामानंद जी कहने लगे, बच्चा मैं तेरे से बहुत गहराई से बात करना चाहता हूं। परमात्मा कहने लगे, ठीक से स्वामी जी बातें करो। वो बैठ गए एक साइड में जाकर दोनों जने, और वो ब्राह्मण गए बेदक, वो जो नो देखना रहे थे के, और साथ में वो विवेकानंद भी बेदक क्या कि स्वामी जी का तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, और एक सूद्र के बच्चे को सीने से लगा दिया। वो तो सारे खिसक गए, बैठ गए दोनों गुरु चेल भगवान और आत्मा पुण्यात्मा जिसके लिए वो उतर कर आते हैं। अब रामानंद जी देखो इस मन की बड़ी जो है ना खराब वर्ती है इसकी, एक बार तो मान लिया भगवान है, फिर अपने ज्ञान से फिर सोचने लग गया, फिर प्रश्नों की जड़ी लगा दी भगवान के सामने। इतने में एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण जाति से एक व्यक्ति आ गया, वो बहुत दुखी था और पहले से ही रामानंद जी का शिष्य था और पहले से ही रामानंद जी ने उनको क्रियाएं बता रखी थी, तू ऐसे जंतर कर ले, ऐसे मंत्र कर ले, ये साधना कर ले, तुझे सुख होगा। अब उस शिष्य ने सारा कुछ कर लिया था और उस दिन वो घना दुखी था और आके कहन लग गया, गुरुदेव मैंने आपके द्वारा बताए गए सारे जंतर मंत्र कर लिए, जो भी साधनाएं आपने दी थी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा पूरा परिवार जकड़ा पड़ा है और सभी दुखी हैं और गुरुदेव हम टूटे न बिगड़े दुखी कर रखे हैं, दारिद्र भी खूब है, बस कभी ना कभी आत्महत्या करना ही शेष रह गया है। अब रामानंद जी ने कहा, पहले तो वो जंतर उसको साधनाएं बताता था, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, फिर देखा कि आज तो इसने किल्ली काट दी कि मेरा ना कति लाभ हुआ, अब मरूंगा। तब इनके पास एक और जड़ी होती है नकलियों के पास, ये क्या कहते हैं कि देखो भाई, देखो बात सुनो, ये तेरा प्रारब्ध में लिखा हुआ पाप कर्म है, ये तो बच्चा तुझे भोगना ही पड़ेगा। आपने सुना है भगवान श्री विष्णु जी ने नारद के द्वारा दिए गए श्राप को भी भोग कर ही पूरा किया, श्री रामचंद्र रूप में आए थे और उन्होंने अपने कर्म का जो जो श्राप दिया था नारद जी ने वो भोगना पड़ा, पूरा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। और सुन, जैसे सुग्रीव के भाई बाली को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और फिर श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रगट उत्पन्न श्री विष्णु जी के पैर में तीर मार के अपना बदला लिया। कर्म का दंड तो भाई भोगना ही पड़ता, देखो भगवानों ने भी भोगा। अब वो शिष्य कहने लगा, महाराज जी आज आपकी किसी भी बात का असर वेरा नहीं हो रहा, मैं तो घना दुखी हो गया। अब परमात्मा कबीर जी बोल पड़े बीच में कि स्वामी जी, जिन भगवानों और देवताओं की तुम पूजा करते और कराते हो उनसे पाप कर्म नहीं कट सकता, उनसे जीव दुखी से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके भगवान का विधान है, जैसे कर्म आपके लिए है वैसे ही भोग नहीं पड़ेंगे। और परम अक्षर ब्रह्म जिसका मैं संदेश लेकर आया, परमात्मा ने अपने को छुपा कर वहां कहा, वो परम अक्षर ब्रह्म घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब वो रामानंद जी कहता है कि बच्चा कबीर जी, भगवान कि विधान में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा, मैंने चारों वेद पढ़ लिए, गीता जी मैंने पढ़ ली, पुराणों का मैं ज्ञाता हूं, परमात्मा के विधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो जीव के पाप नाश कर सकता है, प्रारब्ध का नाश कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में देखिएगा। अब रामानंद जी का संस्कृत तो सारी याद थी पर उसका निष्कर्ष पता नहीं था, इसका अर्थ क्या बना, वास्तविकता क्या है, तो उसने उस तुरंत ही संस्कृत बोल दी। परमात्मा ने कहा इसकी हिंदी भी सुना दे, तब रामानंद जी ने कहा कि सचमुच इसमें तो ऐसा ही लिखा है कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, हाँ उसमें क्या कहता है रामानंद जी के बच्चा, मैं नहीं, ये तो आप किसी भी उसको देख लीजिए, वो शुक्राचार्य भी यही कहते हैं जो राक्षसों के गुरु थे, और बृहस्पति जी भी यही कहते हैं कि अपने कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर प्रमाण दिखाते हैं, पुराण में ऐसा लिखा, देखिएगा जो रामानंद जी ने कहा कि बृहस्पति देवताओं के गुरु भी यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी, इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा 282 पृष्ठ पे पांचवें स्कंद में, ये पांचवा स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे, यह देखिएगा व्यास जी कहते हैं, व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण्स वेदाज एंड गीता जी। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, कहने लगे 283 पृष्ठ पर, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है, जो भी होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, महाभाग दुख और सुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। देखो ये बुद्धि, जो दुख आ रहा है उससे तेरे पाप कट रहे हैं और सुख जो है वो तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, बड़ा बड़ा बढ़िया विद्वान बता रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। इवन की बात आवापन है, इस दास ने तो खूब आवा है।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
3: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
4: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्राम आते जो भी विचार पेश किए जाते ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: सुख के अभाव में भी आनंद का अनुभव करें, अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। वारे देवताओं के गुरुओं, अब क्या कहा है बृहस्पति जी ने कि भाई सुख के अभाव माने दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब किसी के पेट में दर्द हो जाए, हो गया ना सुख का अभाव, आनंद रहेगा दिखाइयो किलकी मारेगा। अब वो तो पेट के दर्द की पीड़ा की कोई औषधि मिला जिसके कारण वो अभाव हुआ है सुख का, तब वो आनंद हो सके। इस तरह की बकवाद करने वालों ने देश डबो रखा है। एक समय ये दास, एक पिंडारा गांव है जींद के पास, और वहां एक गीसा पंथियों का आश्रम है। उस समय तक इस दास को नाम देने का आदेश मेरे गुरुदेव ने नहीं दिया था, और मुझे कुछ मालिक की प्रेरणा थी। ये दास इस चीज से प्रभावित था कि गीसा संत जी को, आदरणीय गीसा साहिब जी को भगवान मिले थे, और उनसे उसके पंथ के लोगों को भी कबीर परमेश्वर का ज्ञान होगा। इस उद्देश्य से उनका सत्संग हो रहा था, पंडारा वहां चला गया तो वहां क्या रखा उन्हें सांग, ये लाल कपड़े वाले गीसा पंथी, बिना गीसा पंथी और भी नरे बुला रखे, और उनमें से एक व्यक्ति ये उसके विषय में ये बताया जाता था सटेज सेक्रेटरी के द्वारा कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, बड़े मर्मज ज्ञाता हैं अध्यात्म के, तो सभी श्रोताओं का ध्यान उस पर टिका रहता था। वो क्या कहता था, ये जीव अपने आप को भूल गया है जिस कारण से ये दुखी रहता है। कोई भी कर्म का दंड है वो शरीर को भोगना होता है, जीव स्वतंत्र होता है। और क्या बताता है कि एक समय में जा रहा था, एक व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा था, मैंने उससे कहा, अरे भोले प्राणी तू क्यों रो रहा है, ये कष्ट तो तेरे शरीर को है, जीव को थोड़ा ही दर्द होता है, तू अपने आप को जीव मान रहा है और जीव को दर्द महसूस कर रहा है, इसलिए तू दुखी है, तू मान ले कि तुझे पीड़ा नहीं है शरीर को है, भोगने दे, इसका कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्या कहता है, उसी समय वो व्यक्ति कराहना बंद कर गया और उसको आभास हो गया कि तो शरीर का भोग है, शरीर को कष्ट है, पड़ा रहेगा, मुझे क्या है, वो सुखी हो गया। हमारे जैसे श्रोता बोले वाले तो सभी खुश हो जाते हैं, जो भी जैसा प्रवचन कोई करता उसी को सत्य मान लेते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, अब हमें ज्ञान हो गया, इनकी खाल तार जाएंगे सारे की ये सब बकवास कर रहे हैं। तो उस समय जितने और जो बैठे थे उस स्टेज के ऊपर 10-12 लाइन में, वो सारे फेल कर दिए, उसने इस तरह के लतीफे तार बातें कहकर छोड़ दे। अब उन दूसरे की तरफ लोग आकर्षित नहीं रहे, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे, अब वो दूसरे संत दुखी हो रहे, वक्ता वह भी से थे, पर वो इन्होंने सोचे थे आज थारी मार्केट डाउन होगी। अब कुदरती क्या हुआ कि तीसरे दिन, वो 3 दिन का सत्संग था, 2 दिन तक खूब चढ़ा रहा, तीसरे दिन सत्संग करके वो क्या करता था, उसका नंबर आता था सबसे पहले, वो करके सत्संग उठ के चला जाता था, एक कमरा दे रखा था उसको आश्रम में, उड़े जाकर अपना रेस्ट करता, चौधरी पाक रहा था कति खूब लक्ष्मी चंद की तरह। अब वो क्या हुआ, वो उठ के जाकर लेट गया, उसका पेट में दर्द हो गया। अब श्रोता भी तकरीबन उठ जाते थे, कोई 20-30 रह जाते थे, वो दूसरे अपने थोड़ी बहुत देर गा बजा के वो भी उठ जाते थे, उस दिन ऐसी बीत रही थी उनके साथ। उसका पेट में दर्द हो गया उस ब्रह्म ज्ञानी के, अरे चिल्लावे डांगर की डाल, आयो मुर्गा हर खा रहा दड़ी पक्का बेटी का बाप, अब उसके दूसरा आश्रम था साथ में, उसके वहां से कार ले आई, उस कार में गेर के उसने दो तीन जने गए जींद लाए के हॉस्पिटल में। वो 2 बजे से लाए थे, उतर के 6 बजे से पहुंचा वापस, उसकी ट्रीटमेंट हो गया, शांति होगी, पेट की पीड़ा ठीक होगी। और वो आया ना, जब वो सारे उठ लिए बाबा जी जो प्रवचन करता हुआ, मार्केट डाउन हो रही थी जिनकी, वो तो इस तलाश में थे कि कद ठावे इसकी बकवाद सामने आवे, तो वो गाड़ी से उतर कर अपने रूम की तरफ चला, जैसे जच्चा चाल लग रहे, धीरे धीरे कदम रखे, क्यों पेट में पीड़ा हो रही इसके। तो उनमें से एक जो बुला रखा था, दूसरा आमंत्रित किए हुए हुआ था, वो आगे बढ़कर बोला, रे ब्रह्म ज्ञानी, रात को क्यों चिल्ला रहा था, तुझे पीड़ा थोड़ी थी, वो तो पेट को थी, भोगने देता, क्यों गया धक्के खाने वहां, बात बना रहा था। वो ने कहा चुप रह, चुप चल चल अपना काम। अब उसकी बोल पाट की, तो वही सती थी इस या हमारे बृहस्पति जी की, देवताएं के गुरु की है। नौके सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, कलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता, उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 5वें स्कंद में, ये 282 पृष्ठ पे आपने यहां से पढ़ा कि व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोग्य नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। अह, देख कितनी बढ़िया थ्योरी, कि सुख तुझे मिला है तो तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और जो दुख तुम भोग रहा है तेरे पाप नाश हो जाएंगे। बस ये वेदांत है, फिर आम आदमी ने बता दे तुम्हारी क्या जरूरत है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अब मैंने तो ये कति बाढ़ लगे जैसे एंड बैंड बोलिया करें, ये तुम न मैं ऋषि वैश्य दिखते हो अभी तक। अब देखिए 242 पृष्ठ पे, राक्षसों के गुरु यानी प्रह्लाद के गुरु से आपकी भेंट कराते हैं, वो क्या विचार रखते थे ये देखिए। ये है 4वां स्कंद और ये 243 पृष्ठ पे, व्यास जी कहते हैं, प्रह्लाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से, ओह ये डोंगी नो बैठ जाओ चाकड़ कर, पता नहीं क्या सोच कर लाओगे, ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो, यजमान माने भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो यह वचन बड़ा ही हितकर सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं, धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से प्रास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है, कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब देख इनकी कमाल की बात है, नो थे बोले वाले हम। व्यास जी कहते हैं, प्रह्लाद की बात का उत्तर देते हुए, प्रह्लाद जी ने कहा था हमारी रक्षा कर लो, कहीं मैं इन देवताओं से परास्त होकर पाताल में ना जाना पड़ जाए, ये समस्या रखी थी प्रह्लाद जी ने। तो शुक्राचार्य कहता अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर, और न्यू बोला, न्यू कहने लगा, उन्होंने कहा तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और देवताओं से परास्त नहीं होने दूंगा। और फिर तुरंत ही बैंड बदल गया, गेर बदल दिया। धर्म के मर्मज महाशयों, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी वो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर और सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं, धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल यानी नाश करने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, भक्ति खत्म हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे यहाँ के गए था ये पेरेड देख, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पाताल में नहीं जान दूंगा, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर इन्होंने कहा देख एक बार तो जाना ही पड़ेगा, फिर तू टट्टू कर देगा। बता ये बकारे थे हम नाचते ही, मैं ऋषि की पदवी पा रही है और गुरु बन रहे,

0: पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा गल मोतियों के हार, पतिव्रता को मिले न खादी सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, इन पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। पुनात्मा आपको वेद दिखाते हैं, वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है प्रारब्ध के, जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं कि इस सतनाम से, ये जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, इससे आपका सभी पाप नाश हो जाएंगे, संचित भी प्रारब्ध के भी, और क्रियावान तो आप पर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पाप कराएं को नहीं, सोच बूझ के कदम रखेंगे, और फिर भी किसी कारण से इच्छा कर्मा रहे नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे, तो वो हमारे पास साबुन और जल ये सतनाम है, किसी कारण से अनजाने में कोई गलती पाप हो जाता है तो इस मंत्र से वो साफ हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद क्या बताते हैं, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा लिखी है कि वो घोर पाप को भी काट देते हैं। अब एक बात समझण की है पुणात्माओं, ये महर्षि दानंद अंडी पाक रहा था इस कलयुग में, और इसकी विचारधारा वही थी जो इन अन्य ऋषियों की थी जिनको वो रिजेक्ट करना चाहता था। ये देखिएगा उनके अनुभव, उसके सारे जीवन में जो उसने किया और सोचा और समझा वेदों को, सत्यार प्रकाश में लिख गया, ये थोड़ा सा दिखाएंगे एक झलक, ये सत्यार प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया, ये कहां से छपा है, किसने प्रकाशित किया है, इसमें ये देखो वेदों की मोर लगा रखी है कि मैंने इन वेदों आदि सभी सदग्रंथों से प्रमाण देकर इस सत्यार प्रकाश की रचना की है, महर्षि दानंद कह रहा है, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणी संविन्त श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, महर्षि दानंद के द्वारा ये वेद आदि सभी सदग्रंथों से के प्रमाणों से लिखा है, इसमें जो लिखा वेदों अनुसार है, ये इनका कहने का ये भाव है, और ये यहाँ से प्रकाशित है, और छपा कहाँ से है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गुहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके सातवें समोल्लास में ये देखिएगा, ये सप्तम समोल्लास है 163 पृष्ठ पे, और ये सत्यार्थ प्रकाश है। किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं, उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। इन मबुद्धि तो थी नहीं, ये तो उसी कैटेगरी का था जो ये ऋषि में ऋषि थे, उसी कुल से था जो ब्राह्मण वर्ग से, लेकिन उस पुराणों से भी अधिक अज्ञान बना के, और इसने इसको सत्यार्थ प्रकाश रूपी इस बोतल में डाल दिया वो अड़ंगा, और हम इसको अभी तक समझ नहीं सके थे। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानता बस जो भी पाप कर लिया, किसी मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से होगी। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को ना से, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराण घास। ये तो इसका प्रैक्टिकल, ये भी झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दानंद जी ने कर रखा है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि ज्ञान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। यही नोट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद, ओनली अनुवाद में भी इसने, ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, यहाँ पर है ये 13वां मंत्र, और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे, यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है। हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप, ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है, इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है 1वें अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण, हितैषी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे, हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो, यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो, यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो पर सतनाम से होते। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो, वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, क्योंकि एवज न माने नाश करना, और आत्म कर्तव्य से अपने किए हुए अनस्य माने पाप के अवेदन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अवेदन माने विनाश करने वाले हो, एनस एनस अधर्म के अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो, और जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूं, किया करता हूँ वा करूं, ओह वेद तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूं और आगे भी जो करूंगा अनजान पने में, तो जो कुछ भी किया करता हूं करूं, उस सब का एनस माने पाप का, दुष्ट आचरण नहीं एनस है, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है, एनस माने पाप है। तो कहते हैं उस सर्व से माने सब एनस माने पाप के अवेदन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं, ना तो व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। और न बृहस्पति जी को ज्ञान, और इस नकली में ऋषिदानंद को तो था कहीं तो बांग पिए पड़ा रहा करता, दड़ी दूध पीवर डंड पे लिया करता। अपने आत्माओं, इनको गुरु नहीं मिले। कौन से गुरु? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन परमात्म ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय जानकारी जिसमें दी गई है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और वो तुझे परमात्मा का ज्ञान बतावेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है जो जन्म नहीं लेता, असंभवात, कोई उसको संभवात कहता है कि वो अवतार रूप में जन्म लेता है। तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी गीता ज्ञानदाता वही है, वेद ज्ञानदाता भी वही ब्रह्म है। वो कहता है कि मैं उस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं हूं, उसको तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। और वो ना ब्रह्मा जी को मिले, ना व्यास जी को मिले, और ना बृहस्पति जी को मिले, ना शुक्राचार्य जी को मिले। तो क्या बताते हैं परमात्मा? इसलिए ये वेदों से अपरिचित रहे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। अब क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना, उई इकट्ठी आड़े, निर्मल कैसे होवेगा तेरे, वो संत लगे ना काने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन लई तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-554-4444
2: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210, 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

0: देता परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

कहो नानक हम नीच करम शरण परे की राखह शर्मा जप तप संयम धर्म न कमाया सेवा साधन जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करम शरण परे की राख शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरी दुष्ट सवै तुम कावहो आप हास दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सवै करतारा मो रक्षा निज कर दै करियै सब बैरिन को आज संगरियै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहस तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जु करियो रक्षा राख लिहो मोय राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदंति कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेवगुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन की सुखी एक एक की पीर पछानै कट कट के पट पट की जानै जबद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब करख कर तुह कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझो चारै तुम सब ही तेरहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील नाद सब ताका मूढ़ विचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कस भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती
ਸਿਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹੇ ਵਿਧ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਯਾਤ ਜੁਗਾਤ ਸਰੂਪ ਸਜੰਭਵ। ਅਵਰਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠੋ ਤੁਤ ਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ। ਜੇ ਅਸ ਤੁਜਤਾ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਇ ਮਰੇ। ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ। ਰਸ਼ਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਏਕ ਬਾਰ ਜਿੰਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠਾਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ।

सर्व ठार महासहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ती को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुपीत कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार वाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दोतां गव हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तुम सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार यहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिवत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पुखां सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसया जनिशां सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहां जिस दियां इह वडियाईया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे
सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैं ना जोग की तो मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेह रामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेह रामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन

0: पते
1: भुल जवाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद न सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया घर नाओ निधे आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां

गुरु बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाहे देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचिहारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चेड़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सुआसा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान

सोरठ महला विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा होआ मज्जन गुर आंदा रासे जप हर हर किल विख नासे विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा होआ मज्जन गुर आंदा रासे जप हर हर किल विख नासे संत हो रामदास सरोवर नीका जो नावे सो कुल तरावे उदार हुआ है जी का रहा जय जयकार जग गावे मन चिंदड़े फल पावे सही सलामत नाई आए अपना प्रभु त्याए संत सरोवर नावे सो जन परम गत पावे मरे न आवे जाई हर हर नाम त्याई यह ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवान बाबा नानक प्रभ शरणाई सब चिंता गणत मिटाई यह ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवान बाबा नानक प्रभ शरणाई सब चिंता